उपमा महा कलगी धर पातशाह कहंदे ने अकाल पुरख तू राजयां दा राजा तू सूरजां दा सूरज तू देवतियां दा देवता तेरी उपमा बड़ी महान है।

ऐसी उडारी मारी कि मानो दुनिया पलट गई। एक बड़ा ऊंचा पहाड़ है, चार चुफेरे बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। एक छोटा जिया पानी दा तल है, कुछ महात्मा बैठे ने कीर्तन शुरू होया। एक बड़ा ही तेजस्वी पुरुष इन्हां सारियां दे विचकार बैठा है। कीर्तन ऐसा शुरू होया, उस कीर्तन दे विच सारे गवाच गए ने। सुरत ने उडारी मारी एक अनुभव नगर जा पहुंचे। ऐसा नगर जिदे बड़े बड़े ऊंचे मकान ने, बड़े बड़े वड्डे महल बने हुए ने, पर ओ महल इट्टां गारे दे ने, हीरे जवाहरातां दे नालों भी सूक्ष्म शहद बने हुए ने। उस शहर नू बेगम पुरा भी कहंदे ने, जिथे गम कोई नहीं। तेजस्वी पुरुष दे नाल असी भी इस शहर के अंदर दाखिल होए हां। इस शहर बारे धन गुरु अर्जन साहब अपने शब्द

वैसा महल उसर जांदे ने, फुल भी लगे नहीं, फुहारे भी नहीं, फुल तोड़ लो उदी जगह दूसरा फुल आ जाएगा, क्योंकि इत्थे मौत नहीं। इस शहर बारे भगत रविदास जी आपां नूं कुछ ज्ञान करवांदे ने कि इह शहर कैसा।

दरवाजा खुलिया तेजस्वी पुरुष दे नाल असी भी महल दे विच दाखल होए हैं। कुछ आत्मक मंडलों वाले लोग बैठे

अचानक प्रकाश होया। हर पासे बनस्पति खिड़ गई, मानो अज दुनिया दा भार हरण वास्ते एक होर जोत प्रगट हो रही है। कुछ घड़िया बाद हर पासे खबर फैल गई कि माता गुजरी जी के ग्रह एक सुंदर बालक ने जन्म लिया, ते कलगीधर पातशाह आप लिखते ने कि साडा प्रकाश पटना साहब की धरती से होया। मुर पित पूरे

पूछिए कि तुसी अवतार क्यों लिया ताके आ मैं अवतार जरूर ले दुष्टां दा नाश करन वास्ते ले संतां दी रक्षा करन वास्ते ले मैं परमेश्वर नहीं मैं ते परमेश्वर दा दास हां उन्हें जो खेड बनाई ओदी खेड देखन आया

हेमकुंड पर्वत जिथे आज हजारा संगता दर्शन करने वास्ते जांदियां ने, सचमुच मन सच्चा प्यार सच्चा ते कलगीधर पातशाह फिर आप लैण वास्ते अगू आंदा है, अपनी गल दे नाल लगा लैंदा है, अपने चरणा दे विच जगह दे दिंदा है। आओ भाई उस दुष्ट दमन दे तपो स्थान दे आपां भी दर्शन करिए, कीर्तन करिए सुनिए, हो सकता है कीर्तन सुनदे हैं साड़ी भी सुरत उडारी मारे ते उस शहर दे विच सानू भी जगह मिल जावे, साड़ा आया सफला हो जावे।

ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मिटता, नाम रहो सब। माता जी चले गए, पिताजी चले गए, बाबा ही रहते। शस्त्र विद्या सीखण लग पे, गुरबाणी दी विद्या सीखण लग पे। वेले बह के मैं रोटियां नहीं पाड़नी, होर भी कई। अज आप जी दे नाल बाबा जी आप ही ओ सीन सांझा।

अंगद दे जूठे कौले माई दे पे आज ये गुण ले जाना बाबा दीप सिंह हुण ते कौले मांजन बाबा ही कोले माई दे पे कोला हाथ चे नाल नाल सिमर नाल नाल कोला नाल नाल सिमर नाल नाल कोला इन्नी क लिव लग के कोला माई दे पे के गुरु गोबिंद सिंह जी नु 10 मिंट हो गए कोल खड़िया पिछे ते बाबा जी का उधर लिव जदों हिंग नाल हुंदे सी गुरु गोबिंद सिंह बाबा जी दे जदों ध्यान वेख्या साहब खड़े ने ते कहंदे कौला हाथ विच ही है सवा नाल लिबड़िया हाथ भी लिबड़े ने सवा दे ते डंडौत करके मालक नूं कहंदे जी भुल हो गई आप जी खड़े ते मेरा ध्यान ही नहीं कि आप कोल खड़े बख्श लेना गुरु गोबिंद सिंह महाराज दसना ते दूजे सिंघां नूं होणा कहंदे दीप सिंह कोले माई दा ते बाबा जी तुहाडी कृपा नाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज तुहाडी कृपा नाल ते तन गुरु गोबिंद सिंह

आखन लगे सानू ते दस के नहीं गई। अगे भी जांदी है उन्हें आख्या जी सानू ते कोई भी नहीं पता, असी ते कदी भी राणी नू जांदिया नहीं देखिया। मन विच भरम हो गया राणी किथे जांदी है मैनू दसण तो बगैर। अज दूजा दिन होया इन्हें सोचा भी हुण मैं रात नू ख्याल रखना है, सौना नहीं, देखना है राणी जा

कीर्तन सुनने वास्ते तुर पई है। जदों दरवाजे चों बाहर निकली ते राजा भी उठ पिया है। अज सुता नहीं ना, देखना है राणी जांदी किथे। अगे अगे राणी तुरी जांदी है ते पिछे ये तुरिया जांदा है। की देखदा है, दीवान लगा है, पागां वाले हाथ जोड़ के बैठे ने, अखां मूंदियां ने ते चूम रहियां ने रूहां, कीर्तन दी बरखा हो रही है। राणी दीवान विच जाके बैठ गई है। राजा दीवान विच नहीं गया, बाहर खड़ा सोचता है। कीर्तन सुनने वास्ते आंदी है, मैनू दसण तो बगैर। बड़ा गुस्सा आया, जी ते करदा है परी संगत दे विचों इनू खिच के लै आवां, पर लोग की आखणगे, इंज नहीं करना, घर आएगी ते फिर मैं इनू पुछांगा।

हाथ जोड़ के संगत नू तरला कर रही है। मैं तारा राणी हां, राजे नू दसन तो बगैर आंदी है, चोरी आंदी है। जे उनू पता लग गया ते मैनू बोल कबोल बोलेगा। अज जदों हाथ जोड़ के बेनती की थी ना संगत नू, सारी संगत दे मन विच रहम आई, सारे प्यार विच भिज के प्रभु दे चरणा विच अरदास करन लगे। ऐ सतगुरु बख्शिश करो, ऐ प्रभु रहमत करो।

तेरी बाणी विच बड़िया रहमतां ने। साध संगत मिल गाम दे राती जाए सुने गुरबाणी। अतारा राणी दी उदाहरण दे के भाई गुरुदास जी सानू समझाउण दा जतन कर रहे ने। कीर्तन विच बैठेगा ना दुनिया दे दुखां कलेशां तों सतगुरु तैनू आप बचा लवेगा।

0: हरि गोविंद भूल मत जाओ।
1: इतने कीर्तन समाप्ति कर दें, कीर्तन करने बाणी पढ़ दें, आप जी आनंद सेवकंद को बेंद भुला हुई होगी, आप जी बख्शन योग हो भुला चुका लिखे मां आयो संगता वालों परम पूज सिंह साहब जी वालों बेंत माया शोध पीठ हाजिर है पातशाह जी जिन्हें खजाने जमाए सुख जाने भरपूर करने सत खालसा जी काज राज करने हुक्म है जी पंच मिनट का शब्द मंत्र करते कीर्तन कर जाइए। सवैये महल चौथे केजी के बिचों टेक है सच साज

0: हरे हरि हरे हरि यहाँ हरि वहाँ हरि गिरे हरि बूटे हरि छिते हरि नपे हरि जमी हरि जमा हरि मकी हरि मका हरि हरि हरि हरि हरि
1: तू ही सदा तू ही
0: जी सदा

0: सर्व नानक कहो नानक भला मेरा कर्म जित भेटे साधु के चरण।
1: भगवान राम
2: पीरनी की चुग्गी पहुंचे भगवान जिना रहा तू आयो ना रहा तू मैं सदके जा कुछ आदास छाया पीलनी ने त्रेता युग दे मालिक भगवान रामचंद्र जी बैठ गए। महाराज मैं गरीबनी ते बख्शिश कीती है ना नहीं पीरनी तेरे प्यार तेरी जे पीरनी भुख लगी है आखो श्रीवाल पीरनी डाढ़ी भुख लगी कुछ खिला रब नू बड़ी भुख लगी बाबा जी कलेरां वाले बाबा जी बाबा नंद सिंह जी महाराज प्राप्ति वाले महापुरुष नाम जप के नाम दी प्राप्ति नाम जपना होर चीज है नाम दी प्राप्ति हो जेडे परमार्थ दे राह ते तुरे नु भाई उन्हां दे भी चरण चुमी है तुरे तां जेड़ा तुरया है ओही पहुंचण दी आस रख सकदा है कदे ना कदे सी ते जेड़ा परमार्थ दे राह ते तुरया ही नहीं है वो पहुंच किवें सकदा गली बाती तो पहुंचया नहीं जांदा। भाई गुरदास जी ने लिखे है पूछ तो है पधक से मार्ग ना धरे पग प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए गल्ला नाल आजकल दी दुनिया गल्ला नाल ज्ञान चाहुंदी है और भाई महापुरुषां दा कथन है गल्ला नाल ज्ञान नहीं मिलदा ज्ञान ना गली ढूंढिए कथना करड़ा सार ए तो बड़ी करड़ी मंसल है औखी काटी पर जेड़े तुर पैंदे हन ते करदे हन साई दे मिलन दे कर्म चंगे फिर उन्हां नूं प्राप्ति हो जांदी है ज्ञान न गली ढूंढिए कथना करड़ा सार कर्म मिले तां पाइए होर हिकमत हुकम कर्म कर महापुरशां दी संगत करके सानू भाई चंगे कर्मां दी प्राप्ति हो जांदी है। कई कहंदे जी संतां दी महापुरशां दी संगत कीतियां की मिलदा है ते बाबा जी कहंदे सन केड़ी वस्तु नहीं मिलदी आखो श्री वाहिगुरु महापुरुषां दी संगत करके केड़ी वस्तु नहीं मिलदी चार पदार्थ जे को मांगे फिर हजूर कहंदे साथ

की सेवा लगी, धर्म अर्थ काम मोक्ष। फरीद नू भी पता लगा सी कि कोई माता है वो दस देंदी है, अज रब तुठा है, अज रब रुस गया है, चलो मना उस माता कोल चली। मैं रब नू मनाउण वास्ते, रब नू रिझाउण वास्ते कई कर्म कीते हैं, पर अजे ज़ियारत नहीं हुई कि यो सिंगार मिलन के ताई।

बुद्ध सदी पुत जो उजियारे ज्ञान की बढ़नी मनो हाथ ले ज्ञान की बढ़नी।

अकाल मूर्त अयुनि सहंगुर प्रसाद जब आप सच युगा सच है भी सच नानक होशी भी सच चक्र के निर्वर जात हर पात नहिने रूप रंग हरी पीप भूकर सत्य है अचल मूर्तन भव प्रकाश अमित पूज कह जिंद्राम शाहो शाहन गणिज फिर भ्रमण में ही सुर नारासुर नीत नीत मंडन कह तब सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण समत सतपुरे आयु शरण तुहारी मिले सुख नाम हर शोभा चिंता लाए हमारी और न सूझे दूजी ठार आर पर तो द्वारी लिखा छोड़िया लिखा छूट है हम निर्गुण ले हो वारी सर्वक्षण सदा मेरवाना सबना भी आवारी नानक दास संत पाछा करू राख लियु ए बारी सतगुर हुई दयाल का श्रद्धा पूरिया सतगुर हुई दयाल ना कम हो चूरिया सतगुर हुई दयाल का दुख न जानिया

सतगुरु हरि दयाल, सांसद ही सुख दयाल, सतगुरु हरि दयाल, आनंद पाया सतगुरु।

0: अपने भरत करें प्रद बाला अदरा तेरी हड़ियाई नित नानक नाम तिहाई अदरा तेरी हड़ियाई नित नानक नाम तिहाई
1: वाहे जी का हरदास।

आए जदों आनंदपुर साहब दरबार विच नहीं गए, उत्थे आए जिथे धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दा सोहना बाग सी, ते बाग दी सेवा कर रहा है भाई केसरा सिंह, आके चरणा विच बेनती की, भाई साहब कृपा करो सानू ऐसा मार्ग दसो कि साडे कोल एक सिख दी हत्या हो गई है, जो पानी मंगदा मंगदा चलिया गया, असी उहदे मुंह विच घुट पानी दा ना पाया, ते हुण असी ए अपने सिर ते पिया होया गुनाह साडा कीता होया पाप किवें बख्शिया जावे, ते सानू धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे दर्शन होण। भाई केसरा सिंह ने आखिया तुसी इसे बाग दी सेवा करो, समा आएगा तुहानू धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे दर्शन भी होण। भाई केसरा सिंह रोज अमृत वेले आ फुलां दी सोहना एक सेरा बना के लै जांदा सी, ओ सेरा माता जीतो जी जदों धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दरबार विच आउंदे सन तां उन्हां दे गल विच पाया करदे सन, ओ सेरा अज सोइना बोइना ने अपने आंसुआं दे नाल परोया तैयार कीता, आख्या भाई केसरा सिंह लै जा साडी बेनती, ते पातशाह नूं कहीं साडे वास्ते की हुक्म है। जदों भाई केसरा सिंह सेरा लै के आया, ऐसे प्यार नाल गुद्दिया होया सेरा, जिस दे एक एक फुल ते सोइना मोइना ने पता नहीं कितने कितने अथरू डेगे हैं। जदों माता जीतो जी नूं लिया दिता, जो धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह दे सुपत्नी सन, लो माता जी, माता जी कहण लगे भाई केसरा सिंह अज बड़े प्यार नाल सेरा गुद्दियाई, एडा सोहना सेरा, आख्या ये मैं नहीं गुद्दिया, ये कोई दो सोइना ते मोइना दनपति आए हैं, ये उन्हां गुद्दिया, ताही ये धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह आ गए। माता जीतो जी ने सेरा साहब जी दे गल विच जदों पाया, अंतर जामी धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहण लगे भाई केसरा सिंह आ बेशक उन्हां नूं जाके कह दे सोइना मोइना नूं बाग दी सेवा जरूर करन, लेकिन जदों असी बाग विच आईए तां साडे मत्थे ना लगन। साध संगत बोलो श्री, क्योंकि साडे सिख ने वचन कीता है कि तुहानूं ठाकुर दर्शन नहीं देंगे। वापस आया भाई केसरा सिंह, मन बड़ा उदास है, सोइना मोइना समझ गए कि अजे हुक्म नहीं मिलिया, रोज नाम जपदे हन, सेवा करदे हन। एक दिन रात दा समय, दोनों अपनी झुग्गी विच बैठे शब्द गा रहे हन, मन बैराग भया दर्शन देखने का चाव, ताई बुआ खड़किया, बुआ खोलिया की वेख्या, माता जीतो जी खड़ोते, आख्या मेरे बच्चियो फिक्र ना करो, जिस प्यार नाल तुसी गुरु घर दी सेवा कर रहे हो, नाम जप रहे हो, एक दिन ओ जरूर आवेगा, मेरा मन कहिंदा है जदों तुहानू कलगीधर पातशाह दे दर्शन होणगे। साध संगत बोलो श्री। ओ सतवीं दा दिन नेड़े नेड़े आ रहा, धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दा अवतार पुरब, ते सोइना मोइना ने सोहने फुल तैयार कीते के जाके साहब जी दे चरणा विच भेटा करके गुलदस्ता बना के सोना भेजांगे। एक दिन विच रह गई, अगले दिन पो सतवीं दा दिन सी धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे आगमन दा, प्रकाश उत्सव दा, ताई रात एक रोड़ा जलाली करके फकीर आया, उसने सारी क्यारियां विचों फुल तोड़ के ले जाण लगा, सोइना मोइना ने जदों ए वेख्या ते चरण पकड़ ले, आख्या ए फुल तेरे वास्ते नहीं, ए फुल असी धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह वास्ते सजा के रखे। तां ओ कहण लगा जे मैनू फुल ना दियोगे तां मैं तुहानू श्राप दे के जावांगा। कंब गए, गश खा के दोनों डिग पए, सर्दियां दी रुत है, दोनों दी लोथां बाग विच पईयां। जदों सवेरे रोड़ा जलाली फकीर फुलां लै के गुलदस्ता बना के धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे चरणा विच पहुंचिया, अज पौ सतवीं दा दिन है, धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दा जन्म दिन,
ਸਾਰੇ ਪੇਟਾਵਾਂ ਲਿਆ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਰੋੜਾ ਜਲਾਲੀ ਨੇ ਫੁੱਲ ਰੱਖੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਰਬਕ ਕੇ ਉੱਠ ਪਏ। ਆਖਿਆ, ਉਹ ਰੋੜਾ ਜਲਾਲੀ, ਤੂੰ ਰੋੜਾ ਜਲਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਰੋੜਾ ਪਲਾਲੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਆਏ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੋਇਨਾ ਤੇ ਮੋਇਨਾ ਬੇਸੁਰਤ ਹੋ ਕੇ ਪੈਣ, ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਲੋਥਾਂ ਪਈਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਗੋਡੇ ਤੇ ਸੋਨਾ ਸੋਇਨਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਗੋਡੇ ਤੇ ਮੋਇਨਾ ਦਾ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਲ ਲਿਆਓ, ਜਲ ਦੇ ਛੱਟੇ ਦਿੱਤੇ। ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ, ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਆਖਿਆ, ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਆਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੋਹ ਸਤਵੀਂ ਦਾ ਪੁਰਬ ਤੁਹਾਡੀ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹਿ ਗਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਐਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੋ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣਾਓ। ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਿਆ। ਅੱਜ ਮਨ ਦੀਆਂ ਲੋਚਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਆ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਔਰ ਰਸਨਾ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਆਖੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਲਿਆ ਸਾਈ ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਾ, ਫਰਕ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਖ ਨਾ, ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਾ। ਆਓ ਕਰੀਏ ਬੇਨਤੀ, ਮਨ ਹਿਰਦਾ ਔਰ ਰਸਨਾ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਪੁਕਾਰੇ ਕੀ। ਆਓ ਪਿਆਰ

जिस के मस्तक हाथ गुर तरह, सो दास अंदेसा काहे करे। जन्म मरण की चुकी कान, पूरे गुर ऊपर कुर्बान, पूरे गुर

जब लवनी आग मिलार उठे तब लव भरम पे तिरते बहुत आयो कल खोर समुद्र में मूड थे कब हूं मिट है नीरे पछतायो सत विचार यह मथुरा जगतार्न को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ धन गुरु नानक पातशाह धन गुरु अर्जुन देव पातशाह जी का पवित्र पावन नाम रसना से लिया है और नेड़े कोई संकट भी आएगा तो 84 लाख जून तू बच जाएगा तो प्यार नाल सारे आखो धन गुरु अर्जुन देव गंगा जी असी गुरु की संगतों के सेवादार पातशाह हुक्म करो हजूर कह लगे गंगा जी फिर कड़ा प्रसाद ही देख पिया पर कड़ा प्रसाद ही देख उस आटे भी नहीं बनाए अज गुरु की संगतों की सेवा करनी है अपने हथी पहला चक्की पी दैनी गुणा वाली मां जगत माता माता गंगा जी अज गुरु की संतान वास्ते आप चक्की पी आटा तैयार किया फिर साहबा ने अपने हथी कड़ा प्रसाद की अमृत देख तैयार सोने थाल विच पाई उत्ते चिट्टा रुमाल पाए माता गंगा जी कह लगे पातशाह किसे सिख नूं बुलाइए हजूर कह लगे नी गंगा जी असी आप ही अपने सिर ते संजय पातशाह जी कड़ा प्रसाद दी दे अपने पवित्र पावन शीश ते रख चादर दी हुकम मारी तुरन लगे माता गंगा जी कह लगे पातशाह मैनू की हुक्म है हजूर कह लगे गंगा जी जे संतां की सेवा करनी तो तुसी भी ठंडे जल की गागर पर जिथे संगत को भुख लगी उसे प्यास तो मात गंगा जी ने सिर के उत्ते गागर जल्दी रख ली हजूर तुरन लगे कह लगे गंगा जी पखा भी नाल लै लो गर्मी बड़ी तुरिया जाता है अज पंजवें गुरु नानक सुरती नाम सारे करो दर्शन से प्यार नाल की रखो धन गुरु रात दसो गुरु तुरिया जाता है सिखा ने दर्शन करो नदी तो रोज तुरती है समुद्र में मिलने वास्ते पर समुद्र कदे नहीं मिलता समुद्र कदे नहीं आता तक लो प्यारी चार सिंह नदी रूप सिखी जे गुरु के दर्शनों तुर पैंदी है जे कोई रुकावट पै जाती है तो गुरु आप ना उतर अद्धी रात दस गंगा जी सुनो ना मेरी सिखा के प्यार वाली आवाज भावें उन्होंने प्रशादा नहीं दे ठंडा जल किसी ने नहीं पिलाया पर फिर भी गुरु की संगत प्यार किस तरह अरदास कर गंगा जी सुनो साहबा ने बख्शिश की थी माता गंगा जी कन्ना में प्यार की आवाज आ रही है फेरी सारी संगत रात का समय प्यार इजरी है ते अरदास कर रही है मेरा

का मंदिर है, लेकिन आप प्रत्यक्ष है जोड़े रहना खतरी अजय पाओ कुटी जी साहब जी कह लगे गंगा जी जी बात है उसी का मेहनत हो जाओ साईं जी आप ही चलो कह लगे।

थोड़ी भी सेवा बाकी रह रही है वो भी कर दो। तो अनुवर्जन दे पादशाह संगत विचो नग दे नग दे नग दे जथेदार दे कौन आके खो दे प्यार नाल किया जथेदार दी गुरु की और संतान ने जोड़िया वास्ते सेवादार की लोड़ है ना दाल तक कम की और गुरु के सिखा एक ही वचन की तेन जोड़िया ना सेवादार बिठाई नहीं नहीं तू अगे बड़ी सेवा की रात प्राप्त शादी देख चुका है ठंडा जन पिलाया सारी रात पक्का करता रहे तू तो कोई धर्म अर्जुन देव पातशाह जी का पूर्व सिख है प्यारिया तेनों इतने नहीं बिठाना तेनों नाल लेके चलांगे ते गुरु अगे अरदास करांगे पातशाह पहली वेरी तेरे दर्शन करने वास्ते आया होर कुछ नहीं मंगते जो कुछ सिख नूं दिता जे साडी को नहीं तेरे सबके तो साढ़े गुना बखे जाए कह लगी जथेदार जी मैनू इतने मजबूर किया तो प्यारी सास ने जी सारी संगत ने जोड़े उतार दिते संगत तो हरिमंदर साहब जा रही है तो जोड़िया का राखा कौन बैठा है प्यार ने आखो पहले संगत अंदर पहुंच साहब श्री मुकुल साहब जी के दर्शन होए पर पंजे पातशाह के दर्शन बाबे बुढ़े ने पूछा बाबा जी पंजे पातशाह कितने हम दर्शन करिए बाबे ने किया साहब संग जी पंजे पातशाह का रात दे पितली साहब गए श्री अमृतसर गुरुद्वारा पितली साहब जी दर्शन किए होंगे पुतली घर के कोल गुरुद्वारा स्थान इतिहासक जो साखी पुतली साहब पुतली घर के नाल पिपली साहब संगत ने कहा बाबा जी पिपली साहब असी रात पिपली साहब रहे सानू तो गुरु के दर्शन नहीं हो क्योंकि संगत पहली दिन दर्शन करवा गुरु की सौ सुन के दर्शन बाबे बुढ़े ने कह नहीं राति श्री हरिमंदर साहब बहुत पे आ 11 का टाइम साहब जी ने कहा बाबे यार गुरु दिया संगत दूरों तर के आई हर कुछ भी ला के उतारा किया है गुरु की संगत भुखी देते मैं कहा पातशाह हुक्म करो जाके लंगर छका दें पर पंजे पातशाह मने नहीं कह लगे बाबे यार तू तो रोज गुरु की संगत की सेवा करता है अज इला सू ले रात इतनी सब एक दूजे के मुंह वाल वेख लग गए जथेदार ने कहा बाबा जी पंजे पातशाह तो नहीं गए सिख जरूर गया हूं एक प्रचार भी छकया जल भी पिलाया प्रसाद भी करता रे बाबा बुढ़ा जी कह लगे प्यारे ओ सिख नहीं सी सिखा का मालिक बाबा जी ये किस तरह हो सकता है तो बाबे ने कहा पता हूं उसे कितने बड़े निराश एक दूजे के मुंह वाल तक के उदासी भी जाके कह लगे बाबे आ हूं तो जोड़िया का राखा बिठा गया बाबे बुढ़े दी कुछ सब कह रही सात संगत पंजे गुरु नानक जोड़िया का राखा बिठा बाबा बुढ़ा जी भजे जी मगर संगत भी भजी जाएगी पहुंच गए इधर मेरे पंजे पातशाह की कर रहे हैं एक जोड़ा चुक लेते हैं वह साफ कर लेते हैं तो भी धूल मथे दे जाते किसी अगम भी खेड़े पढ़ते हैं

और कोई जून नहीं जिदे भी तू सिमरन सेवा परपकार कर सके। दुर्लभ देह पाई वडभागी, वड्या भागा करके तेनू प्राप्त हुई है। ते फिर इस विच नाम दा बीज वो नाम दा वणज कर, क्योंकि तू वणजारा है नाम दा। तू संसार रूपी बाजार विच नाम दा वणज करन आया। ऐसा ना होवे तू अमोलक हीरे मोतियां ते लालां दा व्यापार करन आया होवे, ते टुटिया होया कच खरीद के अपने घर रख लवे। ता ओ कच दे घर विच रहन वाला मनुख कदे जख्मी होण तो बच नहीं सकदा। ए जो दुनिया दे पदार्थ हन, असी रात दिन भजदे हां उन्हां पदार्थां दे मगर, किवें मेरे कोल हो जान। हजूर कहंदे ने ए कच दी न्याई हन भाई, इन्हां पदार्थां विच रहन वाला सदा दुखी ही रहंदा, कोई सुखी नहीं होया। सुखी तां परमेश्वर दे नाम जपण वाले हन। उन्हां नूं पुछ कितने उन्हां दे चेहरे खिड़े हन, कितने नूर हन उन्हां दे मस्तक ते जो जपदे हन श्री वाहिगुरु। इसलिए नाम बीज लो, क्योंकि पता नहीं फिर ए मनुष्य जन्म मिलना है।